दुकान के दा गोरे सही शु जी ढेर ज्यादा मेहरबानी और ढेर शुक्रिया थैंक यू सर अमर जी ओके जी लिसन माता प्रोफेसर आर जी न्यास अली मोहम्मद लिखी जी द प्रोग्राम तासु तहाई का स्मेडिस कंपनी उला ने की सलाम ज रही में मद करकना और मैदा बहुत ज्यादा जलन करता है ढेर ज्यादा मेहरबानी थैंक यू सर अमर जी ओके जी ढेर ज्यादा शुक्रिया ढेर मेहरबानी।

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Nabi Sardar Zaman. मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
3: हर कदम दिखाओ
4: बख्तावर तर बख्तावर।
5: अहमद भाई जहो हर वर्ष शिशत गोरम पमहमी वर्ष पवरस दानी जातीगी नख को लाश्ता और न मिजड़ कीगी चे कोरना बाहर उजम
6: हो रे हिस हफगान न दे पकार मखदानों द पारा इश्माइक ने ड्राप इस्तेमाल का देर जरबदे महना दाने हतम शी और मखबद सफा और कुल इखकारी
5: मनना अहमद भाई उस वा इश्माइक ने ड्राप खाम हा अहलम जहवाड़म जिजमा मखदाने ना सफशी और खैस्तखकारी। अहमद भाई दुकान पता उखाया
6: होरे दुकान पता इधर सर नोट का मौलाना अब्दुल हालिक टेलर एंड कॉस्मेटिक सेंटर हैबर प्लाजा दुकान नंबर 4 मंगल मिला।
7: दाना और जमा इंतखाब दे इश्मा एंटी डैंड्रफ शैम्पू।
8: मैं आयशा फ्रॉम चमकली एंड जमा इंतखाब दे इश्मा मिल्की प्रोटीन शैम्पू।
9: मुझे फायदा दे दकीना और जमा इंतखाब दे इश्मा फेस वॉश।
10: मुझे मजाला वर सक्रोन ना जमा इंतखाब दे इश्मा मुल्तानी मिट्टी।
11: मैं इश्मा लारेब हूँ, मेरा इंतखाब है इश्मा फार्मूला क्रीम।
12: कमजीम दबनुना नीलम जमा इंतखाब दे इश्मा सीरम।
13: कमजीम सियाम दबनुना जमा इंतखाब दे इश्मा सोफ।
14: जयम यास्मीना दबड़ा बेरना और जमा इंतखाब दे इश्मा एंटी डैंड्रफ शैम्पू।
15: जयम रहमानिया दशक कदरना जमा इंतखाब दे इश्मा ब्लैक शाइन शैम्पू।
16: जयम सेमा खान जमा इंतखाब दे इश्मा मिल्क प्रोटीन शैम्पू।
17: जयम समरीन दलकी मारतना जमा इंतखाब दे इश्मा कोल क्रीम।
18: जयम शपक सहर दिल की मरमतना जमा इंतहाब दे इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम।
19: जयम सोफिया जमा इंतहाब दे इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम।
20: इश्मा वफाया दे
21: ओह कुता शबनम की कुरियल मरा गुलाल मुशिंदा मुशिंदा।
22: मेहनूरियम द पिशावर न लास्ट टू इयर्स न जमा द स्किन डेरा मसला दाने और दागुना उपमा अल्लाह गवा दे डेर इलाज में वरला उकड़ो डॉक्टर मेडिसन और प्रोडक्ट्स वगैरह मायूस कोल न की दो बस माल अच्छा मशवरा राका द इश्मा एंटी एक्ने ट्यूब द इश्मा सीरम और इश्मा राइस फेस वॉश टूल लजर दा मशवरा वर कोम चितासु टपल टाइम मवेस्ट कवे द छा मखमानी दानीवी दा गुनवी अगे द पारा इश्मा प्रोडक्ट यूज के इंशाल्लाह मगबम मुकम्मल सफा।

0: दारू।
1: वेलकम बैक वंस अगेन।
0: उस्मानवी
1: मुझे कहते हैं नई मल्ला उमर सही। आप सुन रहे हैं अमन रेडियो नेटवर्क टांग एंड करक। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 88.4 03170906075। राजमा काल सरफ्ता सिफात कॉस्मेटिक्स चिकम और दुन की दी पखेरुनो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम। इना मुल्ला उमर जी से जोड़े
1: कुर्बान शम। नई मुल्ला उमर जी जनाब। नई
2: मुल्ला उमर जी
1: से हतुना खदिर हो रहा
2: बराबर है तबीयत से सदा
1: मन ना सो खबर के जिकम देना।
2: दाऊद खबर को शेख सुल्तान
1: खा दाऊद से पखेरुना प्रोग्राम देखो खेगी।
2: ओ माशाल्लाह देर देर खान रखे देर जबरदस्त प्रोग्राम माशाल्लाह मुख खुदा से
1: मेहरबानी। और सिफात कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट इस्तेमाल हुए कने बीखी मिलाने दे रोड़े
2: यार ना मुझे डर नहीं इस्तेमाल हो बहरहाल गर्मी तो डेरा कलाका मुझे चिर बड़ा मरण छोड़ दे कहता डेर सख्त गर्मी।
1: इस्लामाबाद साता हूँ कने बिल्कुल गर्मी तो दखपल जान दखपल सेहत ख्याल साथ कुछ अरे गर्म के दर बांधी हुई पोजुद मुखारक हुई पोजुद में गर्म के रखी जी ब्याह वजागे परता इस्तेमाल हुए सिफात स्किन हर्बल स्प्रे।
2: खा
1: सिफात स्किन हर्बल स्प्रे तो सर जब कम मलगिर नास्ती टूर तो जमाल अखवा सलामुन अमीना।
2: वालेकुम सलाम।
1: और शरबत होता उसके खाक यख यख शरबत उसके मेहरबानी खुशहाल हो सीधा बंग सर रोर हो पहले मीने
3: रवड़ा
1: मा सर खुसरे पा खबर मीने मोहब्बत दी इतफाक दी इतफाक उसे गए कसा सो मलगिरी दी इतफाक सर जुन तेर के।

0: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
1: द करक अनूर शो खो अखल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पाखपल खार करक के द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़ून बीमारी गुर्दो की कहानी त्रिख की कहानी बेओलादी बवासीर मैदी जख्म ब्लड प्रेशर लोगन लगे दल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़ी बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औकार बीमारो पशमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सैयद जाकिर शाह बाचा से अपना खवलिश है। सूखची डी चिमिस बी चिमिस आर चिम्पी और नूर सनदुना तरला से कौन की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दे नंबर राबित उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजित मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।

0: हाँ जी बिल्कुल सही डॉक्टर साहब प्रोग्राम के बिल्कुल नंच मंग डिजीज है ए बने बहा बिल्कुल खबर है भी वर्षा वर्षा कॉल में हमेशा मिले भी प्रोग्राम से और दिल मैसेज हमेशा मिले बिल्कुल तुझ कॉल कोले से 0331 52 65 340 डॉक्टर जाकिर शाह साहब नसर प्रस्थान कॉल वाड़े नो इनशाला डॉक्टर साहब बिल्कुल तुझे जवाब सही दरकवी एग्जैक्ट जवाब दरकवी द प्रोग्राम तुझे पेशकी पेशावर हेल्थ केयर सेंटर तरफ ना जहां पर जेल चौक से दे मलकमीन होटल या मलकमीन चुकमा सिंह जी दो आगे तक बिल्कुल महमा आदिल बिक्र सरा पसाइड बांधे चुकम से बिल्कुल आजाद भाई के डॉक्टर नसरुल्ला से मौजूद भी बेसमेंट के बिल्कुल दे चुकम दे डॉक्टर जाकिर शाह साहब चुकम दे खा बिल्कुल मौजूद भी डॉक्टर नसरुल्ला साहब चुकम जईद पाई के बिल्कुल दे मौजूद भी सहारा अतु बजने वाला माजी कह रहा हूँ सलूर बजो पर बिल्कुल
1: अजोल बोर्ड लगी थे खला कही तो गोरी कर
0: जी जी बिल्कुल ऐसे
1: काल वाले
0: जी गोरो अस्सलाम वालेकुम जी सो खबर की क्या देना हाँ जी तो से उससे पूछते ना क्यों डॉक्टर साहब ना आवाज दिल लगी उचत का आवाज स्लो दें अच्छा दिमाग में बोझ भी सर होगी हर टाइम
2: जी
0: जी हाँ डिजियान दर्द कभी हाँ जी सही डॉक्टर साहब बिल्कुल तुझे जवाब दे उम्र उम्र दी पच्चीस छब्बीस साल दस उम्र ठीक था डॉक्टर साहब जवाब दर सही ना
1: हाँ जी देख और कल करो छब्बीस पच्चीस साल उम्र सारे बोझ ही दर्द ही ना
0: जी जी
1: खबर
0: बोझ भी मतलब सर में दर्द के भी मतलब टेंशन चुकम दे तकलीफ दे वरता
1: हाँ टें बिल्कुल ना हो दिमागी असाबी या मतलब खूब बराबरी के ना याद मैदे मसलम की देशी असाबी कमजोर एम की देशी कहना तदी मुख्तलिफ वजूहत थी कहना ना चू गुरी आई बी लेवल से वादे दिमाग होता प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की है ना
0: जी
1: आई पाओ जब लगा दी पसर बांध बो जो बीपी कम इधर बीपी या हाई के इधर दागाम अलामत की देशी या मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह कब्ज शीशी अगर तुम आगे टाइम के इंसान तजुर्जा तकलीफ ही पसर बांधे बो जो दर्द कसम वर्जी होता है ना
0: जी
1: बिल्कुल दाखो इनशाला क्या खबर रश इनशाला इलाज भी होता हूँ इनशाला ठीक ठाक बशीदा बोझ दर्द और दिमाग टेंशन भी खत्म इनशाला
0: जी बिल्कुल सही कॉल चुकम दिशा मिलेगी 0331 52 65 340 डॉक्टर जाकिर शाह साहब ना सब स्थान गौरवाड़े ने बिल्कुल कॉल चुकम दे हाँ बिल्कुल मिलेगी दिल लो मैसेज हाँ चुकम दे गौरवाड़े डॉक्टर साहब मैसेज उतर बने सवाल कुमार सब स्थान नौ गुमा बिल्कुल पति नंबर बने प्रोग्राम से मैसेज हाँ चुकम दे वाले शेप 0331 52 65 340 बने अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम हेलो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर दे बिल्कुल ठीक ठाक सो खबर की कम देना
3: खबर
0: जी जी तो सुना सर ना था जी ना
3: हाजी
0: हाजी सही ठीक था
1: डॉक्यूमेंट
0: दर्जी जी सही ठीक था डॉक्टर से बिल्कुल जवाब डेर डॉक्टर जवाब जी
1: हाँ जी अभी रोड काल करोटे बस डायरेक्ट मशरूम तम कहना लगता घंटा नहीं बस बिल्कुल अजी डाइजेस्ट सिस्टम कमजोर है ठीक शो और आगे पहुंच मतलब खुराक की डायरेक्ट वाशरूम तजी और दगा मतलब दीता दगा दाजत जरूरत राजी
0: कहना
1: वाशरूम बिल्कुल दाखो मेदे मसाला मेदे चिकम दे सिस्टम की चिकम देगा इंजाम चिकम देगा फरा पंद जुड़ी होता मेदे सिस्टम कमजोर है उदासी इंशाला राशि और इलाज होते कुटिक बशीदा मसाले में खत्म
0: जी बिल्कुल सही डॉक्टर गोरे चिबल सो को दिक्कत ना दे अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम जी सर खैर भाई
0: आलिए अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है सो खबर है कि मेरा जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब सारा मौजूद है प्रोग्राम से और तकड़ा डॉक्टर बिल्कुल मौजूद है सर और सब तकलीफ से वर्ता तकलीफ से वर्ता مطلب نفسیاتی لحاظ سے ٹھیک نہ دے عمر اس عمر دے جی دا مطلب سمر ٹائم نہ دا مسئلہ دا ورتا مطلب چھوٹ موٹ خبر نہیں اخڑ لے چھوٹ موٹ خبر نہیں اخڑ لے
1: گزارے
0: ٹھیک ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب جواب دے گئی صحیح نا ڈیر امانا تو سر ہو رہی ہو جہان میں ڈیکسپ دیکھو چی تقریباً 1800 سال عمر 20 سال عمر دی مطلب وہی چی دسے گڈ بڑے خبر ہی گئی کہ نا نو ڈاکٹر صاحب دیتا ہم چکم دیتا نسیاتی لحاظ سے ٹھیک ہے
1: جی اور دماغ مان کی چیز چوٹ ہو یا پھڑ دی یا پر وہ چیز چرتا دی تو یاد نہیں اکثر تک اس مسئلے کا نا یا مطلب دماغی ٹینشن ڈپریشن ہوتا ہے خوب نہ برابر ہے لیکن اس کو پیشنٹ مطلب ہم اس کے سینٹم کے مطابق دہو کو انشاءاللہ علاج بھی بالکل کلینک تراش انشاءاللہ مسئلہ بے حل شکا
0: جی جی صحیح دا گورو چھ ڈاکٹر صاحب کال وانے سوک بل سوک دیکھ کمدار نے السلام علیکم ہاں جی بالکل تو سے کال چکم دے ہاٹ ڈراپ شو دوبارہ ہاں کال کو لے چھ 0331 52 65 340 بالکل دے نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال چکم دے ہاں تو اس کو لے چھ

0: पितोलेस और पितो सरासरा नरिनाओ जननाओ पेजार मुदसर शॉपिंग सेंटर दुकान पते दरसरा नोट कई डॉक्टर हबीबुल्ला मार्किट ताजी कला अड्डा बनो
1: RJ Shahid Khan.

0: हाँ जनाब, वेलकम बैक यूज़ अली बिया प्रोग्राम के शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान से यूज़ अली बिया आरजे शाहिद खान तुसेता मुखातिब हर कले खुश आमदीद पखेरा लसरा तुसे लाइव कॉल सिलसिला जारी दो अरसे छे कॉल तरफ तर लुटसी और दिन की इंतजार कवि दा वक्त पे इंतजार सुखती छे खबर अतरे वीर सरा वकिया अस्सलाम वालेकुम जबरदस्त हर कला जी आमना वजीर टेलर फ्रॉम डुमेल ओके जी
1: अल्लाह
0: दे पेरा सवा।

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी

था वाई ची आल प्रोडक्ट मिलावी स्वीट बाई रिश्तिया जमा बाबा द पेसिल बाई जे लहुम दरगले हो बाई ताऊ सर मिलाऊन शो पजड़े इसम अरमानो ताऊ सर मिलाए द सावा हुमा सर मिलाऊ शो वे हां हो बार हल्ज दरे में लड़ा और वापस रहा लमा सलगड़े जाते मसले हुई नो अगे दो जी और ये कम दिनों नोर सर हम नहीं मिलो शवे चन ये उसो कसान सर मिलो शवे बार हल हो बस बाकी चिकम दे अनुदा दुनिया था और साहब बाबा सर हजर मिलो शवे मोचो जोंदी हु अल्लाह दिस्ता बाबा जोंदे साथी सर जमंग द मोर ओपलार इंशाल्लाह चिकम दे खाना नु मिलावी गो बहा आ जक चिमंग मिन साना नु माशाल्लाह इकराम अस्सलाम वालेकुम संग चल आवाज दिबिल ओ आडी रज यात अमरना लगदा से ओ द वकास कॉस्मेटिक स्टोर पंदू जमजम दुकान हवाई छ तमाम प्रोडक्ट मा सर मिलावी वकास कॉस्मेटिक स्टोर पंदू जमजम मार्केट के तमाम प्रोडक्ट मिलावी आडी रज यात अमरना और वेलकम मैनेजर से नादरगुल वई छ वेलकम रज यात अमरना थैंक यू खुशहाल हो मौलाना अब्दुल खालिक मंगल मेला खैबर प्लाजा की दुकान से और तमाम प्रोडक्ट सर मिलावी काशान वाई सलामुन मिकबुल के सरजी से काशान ये महा खाचा माशाल्लाह मुबारक है लाहौर जनरल स्टोर इकबाल मार्केट बरीकोट स्वाद के तमाम प्रोडक्ट मिलावी।

हम और सुनाते हैं हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपकी दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके एहसास का साथ।

मासी जी खुशबू से नाराज है मेरी जिंदगी, खुशबू से नाराज है मेरी जिंदगी, मोहब्बत की मुख्ताज है मेरी जिंदगी। हंस लेता हूँ लोगों के हंसाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। आई एम फौजिया खान फ्रॉम टांको के। गम शेर दरा ले गए जमा खो रही बहरहाल डेर मनना डेर शुक्रिया प्रोग्राम था द मैसेज कौल प्रोग्राम तो दरा सलाम खादिम भाई संग है डेर इंतजार न बाद में खुदाई अरमान पूरा को अवस्था आवाज में और दस्ता प्रोग्राम डेर पमीना और चर तवरक द टांक खोंदो तमे सलाम आई महक फ्रॉम डबरा डबरी नमुंग मैसेज कर टांग के इलाका देखा द डबरी नमुंग मैसेज कर दे महक बहरहाल डेर मन जमा खोर बस कल कल मसरूफियात इंसान लोग रुक रुक सी खुद ब्याम पर रिडार राजम चतन्ना साफ बरा पैदा की गुम ब्याह पैदा शो में कामयाब बेमा जुड़ूम बे जुंदुनो तजुर्बा में नवा मैसेज अगले अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो शो सुपर डुपर नाइस भाई बहुत खुश हो गई आपके आने से भाई सब कर टांक लिस्नर को सलाम आई एम फौजिया खान फ्रॉम टांक ओके जी तशक्कुर और शुक्रिया मेहरबानी और इनको टाइम रहा सिर्फ मुकम्मल तो बंदे खत्म दे वक्त वस में धूम्र निश्चय चीज उस्ता सो मिल मस्तिया उकल मोदा को दस्तूर दे ची शाहान जी मलंगानोला नो टाइम रहा सर पर मुकम्मल तो बांधे खत्म दे वक्त रल नूर इजाजत ना के और इधन को अहदा सिकार दे छे राजूबा जी कले जून ये राजूबा खबर माइंड कवे तासुमा जमा पास खबर बांधे खफा की गए तासुमा सही था ओ मेहनत कवे टाइम छे कमरा गले तासु यकीन के पर मुल्क के डेरा घाटा महंगाई दा इंतहाई महंगाई रा रवान दा हालात दासी तरफ तरवान दी छे डेर सुया स्ट्रगल डेर मेहनत पर कवलो वाड़ी जान लगे लाइफ सेट को पारा अमुंग डेर मेहनत जरूरत कोशिश पकवे मेहनत को और खुपल मासूमान मुस्तकबिल मुस्तकबिल उठा को मशवरे वरकू ये सही से मत तरफ ते रवान को ठीक था कहते कह कमरातुन की जुन दया डेर जात मसरूफ दे डेर जात कार डेर जात स्ट्रगल जिंदगी रा रवान दा ओ हालात दे हद तरी सार रापास है पेट्रोल बला पैसो ग्रान कड़ी और चिकल बिया अर्दानी नु बेसो रूपये अर्दान की हाल तक रवान देखा फिलहाल नो अल्लाह दे ससु पर जिंदगो की ससु पर जुन की आतासु ले सुकून दे की राहत तासु पर जुन की पैदा की दमाबा तासु तो दुआई तासु बमा तो दुआ कवे दमास तासु द माइक तरमंजा रिश्ता था द रेडियो रिश्ता दे जमा आवाज तासु तर समा तो पूरी दीदी माइक दीदी पैनल दीदी चैनल ने दर रसी अब यकीन का फरस का नेम चर तलाड़ा मा ब्या बचे मड़ूमी मा अवतासु चर सोच के चरत जहन के या पख्याल के बाम राजम और दगा दुनिया दा करे जी मुंग जू कहना ग्रुप स्कूल के मुंग सर यो मरगरी पर कॉलेज की बोली पर यूनिवर्सिटी की नूरी पर जब यो इदारा की नूर मरगरी पर बोली इदारा की नूर मरगरी मुंग जी सोरा मख की मुंग जुन ने सख खलक लरे की जो नूर खलक को सर यो देखी दाद जिंदगी फलसफा दो दाद जिंदगी उसूल ली दा जिंदगी दा से रवाना दा ठीक था सो शेरू ने बदलते हुए मोरिदुन को सो शेरू ने सरबरा ले इजाजत रखा हुए और यो संदर दाखिर के बाद अगा को मगा बावरे सो शेरू ने दिवी जुन सहरा तमे द मीने बाडी वरा ओले द जुन सहरा तमे द मीने बाडी वरा ओले मा द एहसास द गुल पल्ला पके लंबारा ओले और जे द मैं जल द रजान बगैर न पाया ما کل کل د جانان کلی ته شپرا وړي او د لیوانتوب د جنگ په زغره کې مین غختی ایمان ما د سحر منزل ځان سره نیزر وړي او دغه سړی محفل د محفل رنگ ګوري او رویسا دغه سړی د محفل رنگ ګوري او رویسا هم یې غزل راوړي هم یې قصیده راوړي او د انتظار د هړ غرمو وخلی صابر د خپل ارمان د ونی سوري له دمره وړي او زما د بټګرامو د کرک زما د بټګرامو د کرک د غرونو د خایست لغم هر سوداګر د کرش ماشین او فولادي سپینه اره راولې چې چرته اوسه خا د باد دوریالیو سې شپم په خیر سحر مو روخانه د لوی لا پامه